आप और हम मिट जाए हमें कोई गम नहीं, लेकिन हीरा मंडी का वजूद मिट जाए ये हमें मंजूर नहीं।

0: एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। कैसे लगा आपको?
1: हटिए,
0: आप जाइए।